0: रोज जंगल विच आया करे, ध्यान दियो, साखी विचो सिख्या लियो, साखी विचो केवल कन्न रसना बनायो, लकड़हारा आउंदा लकड़ियां लैण, इन्नियां क लकड़ियां वढ़दा है, सिर दे उत्ते रख दिंदा है ते मुड़ जांदा है, जाके उन्हां नूं बाजार विच वेचदा है, रोटी पानी दा इंतजाम करके बच्चों का पेट भरदा वा, कहिंदा शुक्रिया वाहिगुरु इन्नियां क लकड़ियां लिया के मैं बच्चे पाल रहा। इत्थे ही एक कुटिया साधु दी, महात्मा गुरु दे प्यारे दी, उन्हें एक दिन आवाज मार के आख्या, वह भलिया पुरशा मैं तेनू कई साल तो वेखदा, तू रोज जंगल विच आना है, इन्नियां क लकड़ियां लैके मुड़ जाना है, की करदा है? महाराज मेरे बच्चों का ढिड भर जांदा है, मैनू इस तो वध कुछ नहीं चाहिए। कहन लगे तू रोज लकड़ियां जो वढ़दा है ते भार भी चुके खड़दा वा, जे तू कि एक कदम गां होवे, आखो सतनाम श्री फड़ लो, जे एक कदम कि तू गां होवे, ते लकड़हारे ने रीझ भरिया अखां नाल आख्या अगे की है, ध्यान दियो अगे की है। कहन लगा अगे तेनूं लकड़ियां नहीं लियाउणियां पैणगियां, अगे रुपईयां दा ढेर लगा है, अगे रुपईयां दे ढेर लगे। कहन लगा हां हां, मगर एक गल चेते रखी कि एक कदम अगे वधी। अगे गया कल नूं वाकिया रुपईयां दा ढेर लगा, भर ली रुपईयां दी पंड, मुड़ गया, ते हुण जदों कदी रुपईये मुकदे ते आउंदा ते उत्थों ही मुड़ जांदा है। ओह गल फेर भुल गई कि एक कदम रोज अगे वधना है, उथों रुपये लै ले, हुण रुपईयां ते खलो गया, कदी लकड़ियां ते खलोता सी, हुण रुपईयां ते खलोता है। फिर उन्होंने आवाज मार के आख्या, भलिया पुरशा तू ते फेर खलो गयो, एक कदम अगे जा। उन्हें कहा जी रुपईयां तो अगे ते कुछ भी नहीं, साडे अर्गे होणगे, साडे वाली हालत होगी, असी भुखे रुपईये लभण आए सा ना इथे, रुपईये लभ के रब कौन, असी कौन, सिक्खी कौन, रुपईयां दी सानू भुख सी, असी लखांपति बन गए। उन्हें महापुरुष ने फिर आख्या, भलिया थोड़ा जा अगे हो, आख्या रुपईये तो अगे की है, किते जाके वेख मेरा बचन कमाया कर, रोज एक कदम अगे वध्या कर, अगे की है? कहिंदे अगे सोने दा ढेर लगा, सोना चुके खा। अच्छा अगे सोना है, एक कदम अगे गया, हुण रुपईये मिल गए, सोना मिल गया, ते हुण कहिंदा इह तों अगे ते कुछ भी नहीं, रुपईये ते सोना मुंदरियां पा लईआं, रुपईये जेब च ने, होर की लैणा है। अगे उन्हें आख्या, तू फेर रुक गए, अगे हो? उन्हें कहा अगे हुण की आ? कहिंदे वेख सोने तों अगे कुछ होर है। उन्हें कहा सोने तों अगे की आ? कहिंदे अगे हीरे मोती जवाहरात पए ने। फिर अगे गया, हुण हीरे जवाहरातां ते खलो गया, रुपईये मिल गए, चांदी मिल गई, रुपईये मिल गए, सोना मिल गया, हीरे मोती मिल गए। हुण कहिंदा जे साधु ने क्या भी ना ते मैं अगे नहीं होना, हुण आ रौला पा ही रहना, हुण आ जाओ गां हो जाओ। इहो ही कह रहा, फिक्स स्टोर मिल गए ने, घर मिल गए ने, गड्डियां मिल गई, आजो दो कदम हुण गां हो, अगे भी कुछ हो। ते जदों उन्हें आख्या, तू फेर खलो गया है? उन्हें कहा बाबा जी हुण ते मैनू सतायो ना। आज कोई कहिंदा मैनू, जदों किसे नूं अमर छकण नूं कहिंदे, कहिंदे भाई जी की रट 24 घंटे, जे तुसीं परमजीत सिंह जदों तू आवे किते अमृत दी गल ना ना करें, सच जाण तैनूं लोकी लत देण रुपईयां ना। बहुते लोकी ते जिदन तू अमर छकाउणा हुंदा उदन रात नूं अज दे दवान च घट आए ने। आज तुसीं नोट करियो, कई चेहरे गायब हो गए, मैनू पता है, इसे करके नहीं आए कि उन्हें रात नूं फेर आखना है सवेरे चक लियो। उन्हें आवाज मार के आख्या, सिंगा तुर अगे, होर तुर, लकड़हारे नूं आख्या तुर। उन्हें कहा जी रुपईये मिल गए, सोना मिल गया, चांदी हीरे मोती मिल गए, अगे की आ? ते उन्हें आख्या सज्जना एक कदम हुण गांह होएगा ते अगे गुरुद्वारा ही, अगे जिथों ओ धन मिलदा जिहड़ा नाल जांदा है, इह धन ते इत्थे ही रह जाणा। अगे एक कदम होर वधेगा ते अगे गुरु दा उपदेश ही, अगे गुरु नाम दे रहा ही, अगे गुरु अमृत दे रहा ही। ते आपां दोवें सारे जंगल दे विच आ, कोई केवल ते केवल सोने तक सीमित आ, कोई हीरिया तक सीमित आ, कोई रुपईयां तक सीमित आ, ते कर्मां वालियां रूहां बाबा फरीद जी कहिंदे हों लोड़ी इस जंगल दे विचों, हों लोड़ी छो अपना, मैं ते अपने पति नूं लभदा फिरदा वां, मगर तू लोड़े अंगियार, तू केवल लकड़ियां इकट्ठियां करदा फिरदा। हां जी
1: फरीदा इतना आटा अगदा, इतना नाही लोना।
0: अगले दा मतलब हुंदा बहुता। बाबा फरीद जी कहिंदे ने एक ते एहो जिहे ने जिन्हां विस गंदलां रूपी इत्थे सारे पदार्थ बना लिया, रुपईया बना लिया, दौलतां बना लिया, जायदादां बना लिया, अपने आप नूं बादशाह खवांदे, आखो सतनाम श्री, इह फलानी चीज दा बादशाह है जी। आंदे नहीं कि इत्थे तुहाडे आम इक बोली, ਇਹ ਸੌਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਢੀਂਗੜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਕਾਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ

0: फतेह बुलाई ते ए आकड़ के खलोता रहा कि टाइम ते मेरे को लेना जे ना संत जी तुसी मैनू बुलाओ ध्यान देना है। ते सारी संगत ने आख्या बाबा जी ए जड़ा बंदा खलोता इनू तुसी फतेह बुला दियो। ते बाबा करतार सिंह साहब बड़े करनी वाले महापुरुष सी, बंदगी वाली रूह सी, जेड़े लोकी सवेरे शराब नाल चुड़ियां करदे उन्हां दे मुंह च अमृत पाया उन्हां उन्हां नूं प्रेरिया। ते जे किसी ने आखना बाबा जी साडे घर पुत नहीं हुंदा ध्यान दिओ, अज वर्गे मेरे पखंडी ते कहिंदे ना लिया सेब तेरी झोली च पा दां पुत हो जू, उस संत नूं जे कोई कहिंदा सी ना साडे घर पुत नहीं हुंदा ते कहिंदा सी सज्जणा मेरी ड्यूटी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अमृत छकाउण दी लाई, मैं पुत वंडण वाला नहीं, पुत्तां दा दाता ते केवल गुरु आ, पुत्तां दा दाता ते केवल गुरु है। इनी निम्रता मन में रखते सी, एवी भी नहीं सी कहिंदे कि जा हो जू। ते जदों कानपुर उतरे ते उन्हें फतेह ना बुलाई सैकटरी साहब ने, ते सारी संगत कहिंदी जी इहनू तुसी फतेह बुला दो। महापुरुष कहिंदे कोई खास चीज आ बाबा जी, कहिंदे पढ़े लिखे बड़े सी, कहिंदे कोई खास चीज आ, कहिंदे जी इहदियां 16 फैक्टरियां ने कानपुर दे विच, इन्ना अमीर आ जिहड़ा कितें संते नूं चंगा लग जाए जाण लगा कार देंदा है, कार दे के भेजदा है। ते महापुरुष कहण लगे मैं कदी किसी बंदे कोलों नहीं मंगिया, आखो सतनाम श्री, क्योंकि बंदा भी मंगता ते मैं भी मंगता। एक पिंडां विच कहिंदे ने मंगतियां कोलों मंगना लानतियां दा काम है, मंगतियां कोलों मंगना, फिर बोलो भिखारी कोलों मंग के की रहोगे, भिखारी रहोगे, क्योंकि देण वाला भी भिखारी आ, तुहानू राजा कित्थों बना दू। जे दाते कोलों मंगोगे ते एक दिन बना भी दाते ही दो। आखन लगे जी इहनू तुसी फतेह बुलाओ, कहण लगे भी सज्जणा फतेह ते गुरु दी आ बुला दांगे, मगर मैं वेख लवां कि इहदी अमीरी किन्नी क्या, ध्यान दिओ। जाके कोल कहण लगे सज्जणा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उहने चिड़े दी पूछ वांग साथ करके आंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी, इह तां फतेह भी इस तरह बुलाउंदे ने आकड़ विच। ते महापुरश कहण लगे तूं सुणिया अमीर बड़ा है, ते छेती नाल कहिंदा हां जी 16 फैक्टरियां ने, विचों एक सत्यपात पिया वे सिकंदला ते कट्ठियां कर लिया, किसी के 10 स्टोर ने, किसी इन्ने खत्ते ने, किसी को इन्नी पैड़ी है। मेरे साहब कहिंदे एक ना आटा अगला, इन्हां दे कोल ते इन्ने आटे दे ढेर ला लैने के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, मगर एक ना ही लोन, आटे दे विच लून बराबर भी किसी ने दौलत नहीं जोड़ी, वह नाम जप रहा है, वह पैसे कट्ठे कर लिया है। अगली तो कुछ सुनो
1: छोटा खासी
0: कौन, हुण एक पैसा है एक कोल नेतनेमिया। बाबा फरीद जी कहिंदे अगे गए संजाब सन, हुण अगे गया पता लगूगा छोटा खासी कौन। मार किनू पैंदी, पैसे वाले नूं पैंदी के नेतनेम वाले नूं पैंदी। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, आप ही नहीं छुट्टे, नानक ते मुख उजले, होर छड़ा लिया होर ना नूं छड़ा लिया, तिन की बरकत खाए असंख करोड़े, उन्हां दी बरकत नाल असंखा नूं रूहां नूं जीवन मिलिया, जिन्हां अमृत वेले उठ के जपिया सतनाम श्री। गुरु कृपा करे ए बचन अपने हिरदे च वसायो। अज तक बाबा फरीद जी दे होए सलोकां दी सारी कथा गुरसिखां ने टेप कीती, अपने भैण भरावां सज्जणां मित्रां नूं एक ऐसा दिओ अमृत दी दात लई। रोज पखंड लई भी कोई ना कोई बचन करदे रहे हां कि पखंड दे कोलों बचो, देहधारी गुरुआं तों सुचेत करदे रहे हां। अज दे तत् ग्यानी तथाकथ जिहड़े अपने आप नूं विद्वान मानदे ने उन्हां प्रति भी इशारे कीते ने। मेरी हथ जोड़ के बेनती अपने भैणां भरावां सज्जणां मित्रां नूं इह कैसटां जरूर इन्हां बच्चियां कोलों लै के देणी आ, तां कि गुरु नानक पातशाह दी पवित्र गुरबाणी दा चानण संसार विच फैल सके। भुल्ला ना चितारनियां असीस दिओ, सतगुरु कृपा करे इह जिहड़ा 14 दिनां तों रग रहे दीवान ने इन्हां विच होईआं गलतियां धन गुरु नानक पातशाह ते गुरु नानक दी संगत बख्शण जोगिआ बख्श दिओ, असीस दिओ। कदी फिर मेरा गुरु नानक पातशाह अपने संजोग बनावे, आपां फिर रल बैठीए, फिर गुरु नानक दीआं कथा कहानियां करिए। अमृत वेले सवेरे अमृत दा बाटा तैयार होना है, सरबत माई भाई सतगुरु दे चरणा विच आउणा, अमृत छकणा गुरु आले बनना। जिन्हां जिन्हां ने अज अमृत नहीं छकिया सारिआं दे चरणा उत्ते दासरे दा सीस आ, आप जी दे चरणा उत्ते मस्तक रख के मैं आप जी नूं बेनती करदा वां। कई बार मन अग्ञानता दे विच उस गल नूं अजे समझ नहीं रिहा, आओ भुले भटके मन नूं गुरु दे चरणा विच रख दईए, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਟਾਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨੁੱਠੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਬੋਲੋ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ
1: ਸੁਹੇਲਾ।
0: ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੌਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁੱਖ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੀਪੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਾ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਰੂਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गया ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते एक गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुकियां गड्डियां मंगनियां, मुक गईयां दुनिया दियां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनू पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन।

जब आद सच जुगाद सच नानक खुशी पी सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक

मैं बेनती करा जे असी आम बंदे की गल से भरोसा ना करिए। एक पासे कहने धन गुरु नानक साहब दाता जी तुसी साडे गुरु हो, ते जो बचन गुरु नानक साहब कहिंदे ने उन्हां नूं भी आपां मन्नन तो इनकारी हो जाइए। इहदा मतलब जबानी कलामी गुरु मन्नन नूं तैयार हां पर अंतर आत्मे तो गुरु की गल मन्नन नूं तैयार नहीं। साहब कहिंदे ने सतगुरु तो बिना किसे नूं मिलिया नहीं, सतगुरु विच उह आप बैठा है। खजूर ने फिर एक बचन होर कहा आसा की वार दी पौड़ीए, कह लगे सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन नेत्री दिया एनी जग, कह लगे जिन्हें कृपा करके मैनू ज्ञान का सुरमा दिता अपनी रहमत कर दिती, ते सतगुरु तो बिना सतगुरु विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। जिस गुरु नू मिलके सतगुरु दे नाल चरणा भी जुड़ के प्रभु की संभाल हुई, जिन्हें ज्ञान का सुरमा दिता ते सतगुरु एक बोहित नजर आया, गुरु बोहित तो बिना रब दा पार वाला पासा पाए नहीं जा सकता। सतगुरु गुरु गुरुदेव जां मुर्शद शब्द वरत लिए, गुरमत ने गल परपक करा दिती है कि साई दे दर ते केवल जा ही हो सकदा जिन्हें सतगुरु दे चरणा दा आसरा ले। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना कि गुरु तो बिना अध्यात्मक जीवन कमाया नहीं जा सकता। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दातार ने प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने एक हुंदा ज्ञान बाहर दा, बाहर दा ज्ञान बाहर दी लियाकत पुस्तकां नूं पढ़ के केवल ता केवल बाहर पढ़े लिखे लोकां दी संगत करके मिल सकदी है, पर जिहड़ा आत्मक जीवन है वह गुरु तो बिना कदी नहीं मिल सकता। साहिब कृपालू जी ने अमृत बाणी विच बख्शिश कीती है कि गुरु तो बिना आत्मक जीवन नहीं। कई बार आप समझने कि किया बाहर के लफ्जा नाल बाहर के ज्ञान नाल सानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। खजूर ने बाणी विच दो तीन प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने पहली गल कि बाहर का जिहड़ा अकल का ज्ञान है अकल के ज्ञान नाल अमे उह रस नहीं चख्या जा सकता। अंदर का जो ज्ञान है आत्मक जीवन है वह सतगुरु के दिते हुए शब्द द्वारा ही चख्या जा सकता है। फिर सतगुरु ने प्रमाण दिते ने, कहिंदे ने बाहर का ज्ञान तो इस तरह है कि जिवें बाहर कोई मनुख चानण कर देवे, अंधकार होवे दीवा बालदा चानण हो जाए, सूरज चढ़े ते किरणा वह हनेरे नूं खत्म कर देन, चंद्रमा की चाननी जिहड़ी है अंधकार नूं खत्म कर दे। पर धन गुरु अंगद साहिब कृपालू कहिंदे ने बाहर हजारां सूरज चढ़ जाण, सैकड़े चंद्रमा आसमान ते आ जाण, पर अंदर दा चानण केवल ता केवल गुरु दे सकदे ने। गुरु तो बिना बंदे दे अंदर कदी चानण हो ही नहीं सकता। सतगुरु गुरु अंगद साहिब दे शब्द असीं पढ़ने आ ते रोज ये शब्द पढ़िया जांदा है, जे सौ चंदा उग वह शलोक है आसा की वार दा दूजा, ते दूजे शलोक तो विचार शुरू की कि कहिंदे जे सैकड़े चंद्रमा आ जाण हजारां सूरज चढ़ जाण पर गुरु तो बिना हनेरा है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार पर प्यारे एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। इन्ना चानण होण दे बावजूद भी गुरु तो बिना हनेरा है। सतगुरु ने देखो साडे अज दे सवालां दा उत्तर भी बाणी भी दिता है, क्योंकि असीं कई वारी सोचने आ मनुख अकल दे बुद्धि दे तल ते बहुत अगे निकल गए, दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई है, ते ओ सफर जिहड़ा असीं कई महीने कई सालां विच करदे सां अज इन्नी कु बंदे दी अकल ने काम कीता कि कई सालां दा सफर कुछ कु महीनियां विच तय हो सकदा है। सच जाणो महीने भी नहीं कुछ कु दिनां विच, दिन भी की कुछ कु घंटियां विच कई सालां दा सफर तय कर सकदा है। ते दातार जी कहिंदे ने अगे मनुख दी रसाई सी केवल धरती तक कि धरती दे एक खिते तो चलिया ते दूसरे खिते ते पहुंच चकदा सी, पर याद रखी मना कि बाहर ते तू दुनिया बिल्कुल छोटी कर दिती, जिहड़ा सफर सालां दा सी ओह घंटियां विच तय कर लिया, जिहड़ी गल अगे तू कई महीनियां विच दूजे कर पहुंचांदा सी एक खिंड विच पहुंचा दिती। पर याद रखी बाहर दे सफर अकल नाल छोटे हो सकते ने पर अंदर दा सफर अपनी अकल नाल नहीं, अंदर दी मंजिल केवल गुरु दी कृपा नाल मिलदी हुंदी है। साहिब कृपालू जी ने प्रमाण दिता है बाणी विच, कहिंदे ने मनुख इन्नी कु तरक्की कर जाए

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

पवंदई खड़ा न आप मुहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पाक पवित्र अते निगी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकाग्र करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप कल दे रोज तो लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। ये सलोक कल दे रोज शुरू कीता सी, जित दिहाड़े तनवरी साहे लै लिखाए। मलक जे कन्नी सुनीदा मुंह दिखाले आए, जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डा को कड़काए। इथों तक आप कल दे रोज सरवण कर चुके। इस तो अगे साहे लिखे ना चलनी, चलनी का मतलब हुंदा है टलना। जो साह लिखिया गया दिन मुकर्र हो गया कि ऐस दिन तेनू चलना पैना है, इस वक्त दे उते रुखसत होना पैना है। ओ गिनिया मिथिया साहा बाबा फरीद साहब जी कहन लगे चलन वाला नहीं है, टलन वाला नहीं है। ना ते उस साहे नू टलन वास्ते किसी अप्रोच ने कम देना है, ना उस घड़ी नू मौत वाले पल नू टलन वास्ते धन दी रिश्वत ने कम देना है, ते ना कोई मददगार ही उस वक्त बन के बढ़न वाला है कि जो इस गल दे विचकार विचोला बन के कुछ सवास कुछ घड़ियां कुछ दिन कुछ पल जीवन गुजारन वास्ते होर दिवा देवे। कोई भी विचोला बनेगा नहीं और बनना किसी दे इख्तियार विच है भी नहीं। कहन लगे ओ गिनिया मिथिया पल टलन वाला नहीं है। एक बेनती करा, अज साढ़े पास सवास ने पर सानू सवासा की कीमत सवासा की सार की समझ नहीं। जद एक एक करके दो दो करके सारे सवास साढ़े बीत जाते ने, सवास बीतन दे उत्ते समझ आउंदी कि सवासा की कीमत की है। अज साढ़े सवास ध्यान दे के वेखिए, साढ़े सारे दे सारे सवास बिन दे अंदर जा रहे ने। विरलियां गुरमुखां प्रेमियां नेमियां नूं छड़ के जो आप सतसंगी गुरु गोदा आनंद पा रहे हो, कुछ होर प्रेमी जना नूं छड़ के ध्यान दे के वेखो दिन दे अंदर किन्ने सवास लै ते ओ मेरे सवास खर्च होए पर किस अर्थ विच खर्च होए। नजर पैगा कुछ सवास काम दी बिन दे अंदर कूड़ेदान दे अंदर पै गए ने, कुछ सवास लट लट करदी हुई क्रोध दी ज्वाला दे अंदर सड़के राख हो गए ने, कुछ सवास साढ़े लोभ दी बिन दे अंदर, कुछ हंकार दे कूड़े दान दे अंदर, कुछ निंदा चुगली दे अंदर, कुछ ईर्षा बखेली दे अंदर। इस तरह ही सवास बहुते खर्च हुंदे हुए नजर आउंगे। कुछ सवास इस तरह दे भी नजर पैणगे जिन्हां सवासां दे नाल वाहिगुरु परमात्मा दा चिंतन कीता होवे, निरंकार दे नेड़े इन्हां सवासां दे जरिए होण दा यतन कीता होवे, पर ओह सवास बड़े थोड़े मिलणगे। मैं एक होर बेनती करदा चला, पानी साढ़े कोल थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पानी है, पर जद पानी बहुत ज्यादा होवे ते पानी दी कदरों कीमत दी पहचान घट हुंदी है। किधरे बंदा घेरे विच आ जाए, मारू थल दे अंदर घिर जाए, चार चुफेरे मीलां तक किधरे पानी दी बूंद तक नजर ना आवे, रेता ही रेता चुगिरदे दे अंदर, और जुबान सुख के तालू दे नाल लगदी होवे, रोम रोम

इच्छा रहे दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोदा आनंद माण रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत कम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर कम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, ओ भी नहीं होएगी ते जो इथे हो रहा है ओ भी पल्ले नहीं पाएगा, ओदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई कम विगड़दा होवे उठ के जा सकते हैं, तन करके भी चलो, मन करके भी उथे रही है, पर जिन्ना समा इथे हां इथे ही रहने की कृपा करियो। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जा तो खट्टन वेल ता तू रत्ता दुनी स्यों। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैने कमाऊं, वेल मैने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाऊं दा वकत सी, ता तू रत्ता दुनी स्यों। उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे तंदे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करा, उम्र दे तकाजे दे नाल हर काम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लेनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना ते बंदा कर रहा है। बुढ़ापे दे अंदर चाहिदा है कि चलो जो हुण कमाया है आराम दे नाल उनू बह के भोगे भी, तियां पुत्रां दे अंदर बह के आराम दे नाल चल पाए, और इस तरह होना भी चाहिदा, परमात्मा सब दियां लोड़ां पूरियां भी करे। अर्ज मैं करनी चाहुंदा सां कि बचपन दा समा पढ़ाई वास्ते तलीम वास्ते बकायदा नियुक्त है। ते जे बंदा ये गल कहे कि बचपन ते मैं अचेत पुणे दे अंदर गवा लवां, बच्चे नूं स्कूल की तोरना है, बच्चा रोंदा है, बच्चे दा मन नहीं करदा, इनू स्कूल ना तोरीए, जेडे मां बाप बच्चियां दे उते इस तरह की दया कर जांदे ने, उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं सारी उम्र वास्ते कदी बख्शदे नहीं। जदों बच्चे वड्डे होणगे बख्शणगे नहीं। अगर तुसी जवाब वजों ये गल कहो कि बेटा उदों तो रोंदा बड़ा सी, तेनू तां स्कूल विच नहीं तो रहा, उदों तेनू रोज रोज स्कूल विच लालच दे के जिद करके भेजना पैंदा सी, तू जाके राजी नहीं से हुंदा, रोंदा बड़ा सी। असी सोचिया कि चलो तेनू स्कूल विच ना ही तोरीए, छह दे घटना तेरे लिए दुखदाई होवे, दुख वाली होवे। ते बच्चा अगों परतवां जवाब यही देगा कि मैं बेसमझ सी, मैनू समझ नहीं सी,
मैं सी उस वक्त न्याणा, मां बाप नूं इह गल कहेगा तुसी ते न्याणे नहीं सी ना, तुहानूं ते पता सी ना मेरी उमर है पढ़ाई करन दी ते मैनूं पढ़ाया क्यों ने, मेरी उमर है स्कूल दे अंदर जान दी ते मैनूं भेजिया क्यों ने। ठीक है मैं रोंदा सां, मेरा रोना तुसी वेख लेना सी, मैनूं चिड़क दे के लोरी दे के किसी भी ढंग दे नाल तोर दे, मेरा पड़ा इसे अंदर ही सी। जो बच्चा जीवन दे अंदर बालपन दे समय नूं अजाई गवा लैंदा है खेडां दे अंदर या सौं के अचेत पुणे दे अंदर अपने ओ समय नूं बर्बाद करदा है, ओ जवानी दे दौर विच पहुंच के ना ते सफल इंसान ही बनदा है, ना डॉक्टर ना टीचर ना साइंटिस्ट ते ना चंगी जॉब दा ओनूं आसरा ही मिलदा है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जॉब मिलनी है अगे आड़ के, ओदा बेस बनाउन वास्ते है बालपन दा समा, ते जिस मकान दी बुनियाद ही नहीं जिदा बेस ही नहीं ओ मकान खड़ा के सासरे दे उत्ते होवे। असीं इह ते चाहुंदे आ कि पक्के महल साडे उसरन, पर इह नहीं चाहुंदे कि ओदियां बुनियादां वी पक्कियां बनाईयां जाण। इक बेनती मैं करदा चला, पक्कियां बुनियादां दे सहारे पक्के गगन नूं गोसा देण वाले मकान उसारे जांदे ने। जिन्हां मकानां दीआं बुनियादां रेते दे नाल भरीआं ने कच्चीआं ने, उन्हां बुनियादां दे सहारे पक्कीआं इमारतां उसरदीआं वी नहीं, पक्कीआं इमारतां खड़ीआं वी नहीं हुंदीआं। बेस बनाउण दा इक समां हुंदा है। अगर किसी ने पढ़ लिख के वकील बनना है ते उहनूं बड़े लंबे समय तो पढ़ाई दे अंदर रह के किताबां दे नाल मगजमारी करके अपना बेस कायम करना पैंदा है, मैं आउण वाले कल नूं वकील बनना है। उहनूं अपना आधार पक्का बनाउणा पैंदा है, ते जिहदा आधार कोई नहीं ओह वकील वी पक्का कोई नहीं। दूसरी बेनती, जिसने डॉक्टर बनना है ओहदे पिछे भी बड़ी साधना बड़ी मेहनत, दिन भर रात दा जागना, मां बाप दा पैसा अपना समा सब कुछ खर्च करके तां किधरे एक दिन जाके ओह डॉक्टर या साइंटिस्ट दी डिग्री पा लैंदा है। एक होर बेनती उदाहरण वजो मैं करदा चला, तुहाडे सामने गुरु के कीर्तनीए बह के कीर्तन करदे ने, उन्हां दा गला ते बाजे दी सुर इह दोवें बड़े ताल मेल विच हुंदे ने, ते जे गला किसे होर पासे नूं बोले ते बाजे दी सुर हारमोनीयम दी सुर दूजे पासे नूं बोले ते ना गाउण वाले दा आनंद है ते ना सुनन वाले श्रोते दा आनंद है। सुर दे अंदर खुब के गाउणा पैंदा है, पर उस सुर दे नाल गले नूं मिलाउण वास्ते उन्हां दी मेहनत वेखो दे पिछोकड़ विच किन्नी खड़ी है। ए नहीं कि पहले दिन आण के किसे ने दस्या कि ए वाजे दियां सुरां ने इहदे उत्ते हथ रख आवाजा आवाज कढेगा ते तूं नाल कह देना सा रे गा मा पा धा नी सा, तूं इह सुरां बोलनियां शुरू कर देनियां ने, सरगमां कहनियां शुरू कर देनियां ने। एक दिन एक सरगम नूं बोलण दे नाल जां उहदे उत्ते उंगल रखण दे नाल बंदा मुकाम ते नहीं पहुंचदा। पता नहीं एक ही सुर नूं हजार हजार वरां इस तों वी ज्यादा ज्यादा वार गले विचों बाहर कढ़ना पिया बोलना पिया, उहदे नाल गला जा के तां मैच करदा है, गला जा के उहदे नाल तां मेल खांदा है, वरना सुर होर कुछ कहिंदी है ते गला होर कुछ कहिंदा है। तुहाडे कोल आवाज भावें किन्नी वी चंगी होवे पर जिन्ना समा उस आवाज नूं तराशिया ना जाए उह चंगी आवाज वी भद्दी लगदी है, ते आवाज दे अंदर खराश होवे आवाज किस तरह दी होवे पर मेहनत कर करके उस आवाज नूं तराशिया जाए आवाज नूं सवारिया जाए गला बिलकुल समर जाए ते उह समरिया होया गला भी मिठा लगदा है भावें उह गाउण दे योग ना वी होवे, मेहनत उहनूं सवार के रख देंदी है। मेरे कहन तो मतलब है मेहनत बेकार गले नूं वी सवार के रख देंदी है, मेहनत माड़े मनुख नूं वी महान बना देंदी है। मेरा प्रश्न तुहाडे उत्ते इह है कि तुसी अपने आप नूं सवारन वास्ते किन्नी मेहनत कर रहे हो, और इहदा जवाब तुसी मैनू ना दिओ अपने आप नूं ही देना है। प्रश्न मैं तुहाडे सामने कर दिता है, तुसी अपने मन नूं सवारन दा किन्ना कु यतन कर रहे हो, किन्नी कु मेहनत कर रहे हो। मैं फिर बेनती करा, अति बेकार गाउण दे योग जो गला नहीं, मेहनत करके वह गला मिठा बन जाता है सुरीला बन जाता है। तुसी अपने मन नूं तरतीब सुर ताल दे अंदर करन दा किन्ना यतन कर रहे हो। भगत फरीद साहब जी कहन लगे जिहड़ा यतन करन दा समा सी
ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਫਾਲੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਾਮਨ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾ ਬਾਲਪਨ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਜਪ ਜਾਂ ਨਾ ਜਪ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਪ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਲਈ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਪਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ। ਤਵਰਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਝ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਜੀਵਨ ਸੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਪੜਨ ਦਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਪਨ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਇਆ, ਬਾਲਪਨ ਉਹਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਪਨ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਮਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਧੁਨ ਧੁਨ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲਹੇਜਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਖੋਜੀ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

0: 30 साल का समा। कहन लगे 30 बरस कश देव ना पूजा फिर पछताना बिरद पयो। अगले 30 साल होर बीते ते बीते इस तरह ही विकारा दे अंदर, गुनाहा दे अंदर, हेरा फेरी दे अंदर, चुगली निंदा दे अंदर। ते कहन लगे उम्र हो गई 62 साल, ते 62 साल दे अंदर बुढ़ापा आई जांदा है। 12 ते 20 32 ते अगले 30 इहदे विच जमा करो, बन गए 62। 62 साल दे अंदर पहुंचदिया पहुंचदिया ते शरीर नूं बुढ़ापे दा रोग घेर ही लैंदा है। ते कहन लगे फिर पछुताना बिरद पयो। बुढ़ापे दे अंदर आण के वेख्या कि जिन्हां वास्ते मैं हेरा फेरियां करदा रहा ओह ते मेरी परवाह करनी छड गए ने। जिन्हां वास्ते मैं लोकां दे घर उजाड़ के अपना घर बना के अपने बच्चियां लई खड़े करदा रहा, उन्हां बच्चियां ने उसे घर विचों धक्का दे के बाहर कढ दिता है ते कौंसल दा घर लैके बाहर जाके रहना पिया। उन्हां बच्चियां ने सलूक ए कीता, जिन्हां वास्ते तू लोकां दे घर बर्बाद करदा रहा, हेरा फेरी करदा रहा, दूजे दे नाल धोखा धड़ी करदा रहा, उन्हां ने कोई परवाह ना कीती। काश तू शुद्ध कमाई कीती हुंदी ते बच्चे तेरा ध्यान रखदे। परमात्मा कोई शक्ति है, परमात्मा बुजारत नहीं कि परमात्मा रूपी एक हवा है, परमात्मा बुजारत है पर परमात्मा है नहीं। अगर तू करदा सही ढंग दे नाल अपने बच्चियां दा लालन पालन ते ओही बच्चे तेरे कदरदान बनदे, तेरी कीमत पाउंदे भी साडे बापू ने कोई हेरा फेरी दी कमाई साडे मुंह विच नहीं पाई, कोई जहर साडे मुंह विच नहीं पाया। तू बच्चियां दे मुंह विच जहर पाया ते उस जहर दा असर यह होया कि बच्चे हुण तेरी परवाह करनी छड गए ने, बच्चे तेनू बुलाउणा छड गए ने। खिमा मंग लवा, मैं बुढ़ापे नू देश विदेश दे अंदर बहुतिया थावां दे उत्ते रुलदा वेख्या, रुलदा दुर्गति हुंदी वेखी है बुढ़ापे दी। मां बेशक रोंदी कलपदी है, कोई नेड़े आण के मां दी खबर सार लैण वास्ते तैयार नहीं। पिता भावे एक डालर तो मुथाज होवे ते पिता दी हथेली दे उत्ते कोई रखण लई तैयार नहीं, ते फिर एक क्यों होया? आखर आपां वी ते बुढ़े होना ही है ना चलदियां चलदियां, क्योंकि आपां रस्ता सही नहीं अपनाया, रस्ता अपनाया उल्टा ते उल्टे रस्ते दा असर जेड़ा होया वह भी उल्टा होया। असी फिर बच्चियां दे उत्ते दोष दे देने आ, बच्चे परवाह नहीं करदे, तुसी रब दी परवाह नहीं कीती, बच्चियां तुहाडी परवाह नहीं कीती। तो खैर पातशाह कहन लगे फिर पछुताना बिरद पयो। कवि तुलसी दास जी ने एक उदाहरण दिती, कहन लगे एक जिमीदार ने ना अपनी जमीन दे अंदर बीज बीजिया, किसी भी फसल दा, फुलां दा, फलां दा, कोई भी बीज बीजिया। ते कहन लगे बीज बीज के उह घर जाके लम्मियां ताण के सौ गया, खेत दी रखवाली कीती ना, परवाह कीती ना, खेत वल चक्कर मारिया ही ना। कां चिड़िया कबूतर बाकी दे परिंदे उह आउंदे रहे, जमीन दे अंदर मिलिया होया बीज चुगदे रहे, एक एक दाना चुकदिया चुकदिया उन्हें पूरा खेत खाली कर दिता। चार महीने बाद जिमीदार ने खेत वाल चक्कर मारिया, भी वेख के आवां मेरी फसल उग के किड्डी किड्डी हो गई, हरे रंग दी लहलाउंदी किवें दी नजर आ रही है। वेख्या फसल उगी नहीं, क्यों नहीं उगी? क्योंकि बीज ही नहीं रहा ते उगे के। कवि तुलसी जी लिखते ने अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया नू उड़ाउन दा वेला सी, उड़ाया नहीं, सुता रहा है, ते हुण तेरे पल्ले की पिया? केवल पछतावा। ते पछतावा क्यों पिया? क्योंकि तू वकत नहीं संभालिया। अगर वकत नू संभालिया हुंदा ते पश्चाताप ना करना पैंदा, तू वकत नू गवाया है ते गवाचा होया वकत प्यारे बर्बाद करके रख देंदा है, किसे नू सवारदा नहीं है, समा किसे दी लिहाज नहीं करदा। समय ने बड़े बड़े चंगे महान पुरशां नू जन्म दिता है ते उन्हां नू समा मटा के भी रख देंदा है। समय दी गर्दश दे नाल, समय दी चाल दे नाल एक पास्यों बनदे नजर आ रहे ने, दूजे पास्यों मिटदे नजर आ रहे ने। समय नू गवाओ ना, समय नू संभालो। जिहड़ा अज दा दिन है ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। मैं एक छोटी जी दास्तान पढ़ी, बिलकुल छोटी। एक लकड़हारा लकड़ा वड़न वाला रहिंदा सी किधरे जंगल दे अंदर, ते जंगल दे अंदर लकड़ा लुकड़ा कट कटा के अपना गुजारा करदा सी। लकड़ा वेच आउणियां, अपना पेट अपने बच्चियां दा पेट उन्हें चलाउणा, गुजारा इस तरह करना। एक दिन चलदा चलदा किधरे उस रियासत दा राजा जंगल दे अंदर पहुंच जांदा, ते शिकार खेडदा खेडदा निकलिया जंगल दे अंदर। जिहड़े दो चार पांच दस वीह सिपाही नाल सन ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਧ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਲੱਕੜ ਹਾਰੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਛਕ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਦੋ ਚਾਰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਅਵਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੇਸਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ, ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੰਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਆਮ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਗ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਮੁਫਲਸ ਦਾ ਮੁਫਲਸ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਗ ਕੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कदी काम दी अग दे अंदर पा के कदी क्रोध दे अंदर कदी निंदा दे अंदर कदी चुगली दे अंदर इन्हां नूं साड़ रहे हां बर्बाद कर रहे हां ते बना रहे हां दे कोले ते कोले बनाउण वाले नूं अखीरी पछताउणा ही पैंदा है। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों कहन लगे उस वकत ते तू दुनिया दे अंदर मस्त रहा जदों खट्टी खट्टन दा वेला सी। हुण एक वचन मैं तुहाडे सामने भाई गुरदास साहब जी दा भी रखदा चलां। भाई गुरदास साहब जी कहिंदे ने कि जैसे घर लागै आग जा कुआ खोद्यो चाहे कार जना सिद्ध होए रोए पछुताइए। भाई गुरदास साहब जी कहन लगे कि जिवें घर दे अंदर अग लग जाण दा खतरा बनिया रहिंदा है घर लकड़ी दे बने घर दे अंदर साजो समान है अग ना लग जाए ते घर दे अंदर पानी दा इंतजाम हुंदा है ते ए नहीं कि इंतजाम अग लगण ते करना है इंतजाम पहला करना पैंदा है। इत्थे इन्हां देशां दे अंदर ते एक एक रूम दे अंदर पानी दे पॉइंट दिते हुए मिलदे ने पानी दीआं पाइपां गईआं होईआं मिलदीआं ने कि किधरे अग वाला हादसा वापरे ते अपने आप पानी चलना शुरू हो जाए अग बुझनी शुरू हो जाए इंतजाम कीता है ना। ए ते नहीं कि उधरों अग लगे ते उधरों फिर कहो जी हुण पाइपां पाओ हुण पानी पाओ वो ते फिर गल ना बनी। भाई साहब कहिंदे ने कि पानी दा इंतजाम करना पैंदा है पहला तां कि घर नूं अग ना लगे जैसे घर लागे आग ते जे घर नूं लग जाए अग कोई उस वक्त सुता सुता जागे जाग कुआं खोद्यो चाहे ते जाके ओ बच्चियां नूं आवाज मारे लियाओ बे कईआं लियाओ खूह पुटिए ते खूह पुट के पानी कढ़िए ते फिर घर दी अग बजाइए। कहन लगे कारज ना सिद्ध होए रोए पछुताइए। ओ कारज सिद्ध होण वाला नहीं घर जल जाएगा राख बन जाएगा पल्ले रोना रह जाएगा ते पल्ले पछतावा रह जाएगा। कारजना सिद्ध होए रोए पछुताइए एक उदाहरण। दूसरी उदाहरण नंबर दो दे उत्ते भाई गुरदास साहब जी उदाहरण देंदे ने कहिंदे ने जैसे तो संग्राम समय सीख्यो चाहे वीर विद्या अनथा यतन जैत पदवी ना पाईए। कहन लगे जिवें कोई लड़ाई दे मैदान दे अंदर जाके ते फेर गल करे भी हुण मैं तीर चलाउणा है जा सिख लवां हुण मैं तलवार चलाउणी है जा सिख लवां मैं घोड़ सवारी करनी है ते ए जा सिख लवां मैं बाकी शस्त्र विद्या दे दा पे जान लवां। कहन लगे अनथा उद्दम। कहन लगे ए तेरा कीता होया उद्दम अनर्थ है ए तेरा कीता होया उद्दम व्यर्थ है जैत पदवी ना पाईए हुण ते मैदान दे जंग दे अंदर तेरे पल्ले हार ही रहेगी जित नहीं ते जित दी पदवी तेनू मिलेगी नहीं। तीसरी उदाहरण दो उदाहरण हो गई ना पहली घर दे अंदर अग लग जाए ते खूह पुट के बुझाउणी चाहिए ते नहीं बुझाई जांदी। तीसरा लड़ाई दे जंग दे अंदर मैदान दे अंदर जाके जे शस्त्र विद्या सिख के लड़ाई जितनी चाहिए ते सिखी नहीं जाती। हुण नंबर तीन दे उत्ते उदाहरण कहन लगे जैसे निस सोवत संगाती चल जात पाछे पोर पयो पार बांध कहो कत जाइए। कहन लगे जिवें रात नूं यात्रू किसे धर्मशाला दे अंदर आण के आराम करन वास्ते सौं गए ते सारे अमृत वेला होया जागे इशनान पान कीता अपने अपने समान दी संभाल कीती उन्होंने चाले पाए ते चल पाए ते एक रिया सुता ते जदों ओ सुता रिया सूरज चढ़ आया दूसरे बहुत अगे निकल गए ते ओ पिछे जिहड़ा सुता रिया सी उन्हों पछताउणा पिया ओ पिछे दा पिछे रह गया उन्हां दे नाल मिल ना पाया। तीन उदाहरणा दे के कहन लगे तैसे माया तंद अंध अवद बिहाए जाए अंतकाल कैसे हर नाम लिव लाई है। कहन लगे तैसे माया तंद अंध तिवें बंदे दी सारी उम्र माया दे तंदियां दे अंदर निकल जांदी है। मैं खुल के विस्तार सहित किसे दिन बेनती करांगा कि माया कहिंदे किन्नू ने इकल्ले धन दा नाम माया नहीं। अज केवल इशारे वजों इन्नी बेनती करदिआं कि साडे ते सतगुरु दे दरमियान जो चीज साडे ध्यान नूं रोक लवे उस हर चीज दा नाम माया है। फिर बेनती करदिआं जो जीव ते परमात्मा दे दरमियान दलदल बन जाए बंधन बन जाए रुकावट बन जाए जिथे भी तुहाडा ध्यान रुक जाए उस हर चीज का ना ही माया। ए हुण ज्ञान भी माया, धन भी माया, तन भी माया, परिवार भी माया, ज्ञान भी माया। किसी वक्त मैं खुल के बेनती करांगा। तो खैर भाई साहब कहिंदे ने सारी उमर इहदी निकल गई इस तरह ही माया दे तंद दे अंदर। पैसे माया तंद अंध ते उमर ने गुजारी अन्या होके, वेख के नहीं गुजारी, वेख के पैर नहीं रखे, अन्ने रूप दे अंदर पैर रखदा रहा। अंतला समा आया ते अंतले समय नू पछताउणा भी पिया, रोना भी पिया। ते हुण ए उद्दम करे के हुण मैं रब जी दा नाम जप के रब जी नू खुश कर लवां, ते कहन लगे हुण समा बीत गया। एक बेनती मैं होर इस संबंध अंदर गुरबाणी विचों ही करदा चलां। हजूर दा बचन है कहन लगे जे को डूबै फिर होवे सार। जे एक बंदा नौजवान दरिया दे किनारे दे उत्ते खड़ा होवे, दरिया होवे बड़ा डूंगा, दरिया का चलदा होया पानी का वेग होवे बड़ा तिखा, ते उस दरिया दे किनारे दे उत्ते खड़े होण वाले जवान बंदे नू, जवान मनुख नू मां वास्ते पाए कि बेटा मेरी उम्र 90 साल, ते मैं 90 साल दी उम्र दा तजर्बा तेनू फ्री खाते देना चाहनी आ। बेटा इस दरिया ने बड़े बड़िया नू अपनी लपेट विच ले लिया। ये दरिया दा पानी बड़ा डूंगा है, दरिया दा वेग बड़ा तिखा है, ते बेटा कदी भी भुल के इस दरिया दे अंदर बेड़ी तो बगैर उतरन दा यतन ना करे। ये अपनी लपेट विच ले लेगा, तेनू खत्म कर देगा, याद रखी। ते जवानी एक इस तरह दे जोश दा ना है कि जवानी किसे दा उपदेश किसे दा संदेश सुनने वास्ते तैयार हुंदी नहीं। जवानी नंबर एक दे उत्ते अपने आप नू रख दी, बाकी सारिया नू पिछे। इस जवान मनुख ने मां नू ए कह के चुप कराया, मां तू ए 90 साल दी, तेरिया विचारां भी बुढ़िया, तू आप भी बुढ़ी, ते तेरिया विचारां नू इस युग विच थां किथे, मैं जानना के की करना है की नहीं करना। मां चुप हो गई। पिता आया ते पिता ने बड़ा वास्ता पाया, बेटा किधरे धुप दे अंदर बह के, किधरे धुप दे अंदर बह के मेरे वाल चिट्टे नहीं होए। इस तरह नहीं है कि मेरी दाढ़ी दे वाल भूरे हो गए चिट्टे हो गए पर धुप दे अंदर बह के चिट्टे हो गए ने, इस तरह नहीं। बेटा मेरी उम्र भर दा तजर्बा है, मैं तेनू अपना तजर्बा देना चाहना, तेरे नाल सांझियां करना चाहना। मेरिया अखां दे सामने इस दरिया ने बड़िया बड़िया नू अपनी आगोश दे अंदर छिपा लिया है, उदियां लहरां दे अंदर बंदा छिपिया है ते बाहर नहीं निकलिया। ते बेटा मैं भी तेनू तेरी मां वाला वास्ता दे रहा कि इस दरिया दे अंदर बेड़ी तो बगैर ना उतरे, डुब जाएगा, इस दरिया दे अंदर पैर ना पाए। ते जवान बच्चे ने पिता दी भी ना सुनी, उन्हें आखिया पिता जी तुसी भी 100 साल दे, तुसी आप भी बुढ़े और तुसी आप भी बुढ़े, ते नाल लगदा तुहाडे विचार भी बुढ़े, तुहाडे जीरण कमजोर विचारां नू अज दे युग दे अंदर किधरे भी थां नहीं। पिता दी भी ना मन्नी। गुरु ने भी वास्ता पाया कि इस दरिया ने पता नहीं किन्या किन्या नू निगल लिया, खा लिया इस दरिया ने। तेरे तो पहला मैं बड़िया नू होका दे दे के क्या है कि डुब जाएगा, बचन दा यतन कर डुब जाएगा। गुरु बेड़ी दा आसरा लै, पर जिन्हां ने मेरी आवाज नहीं सुनी वह दरिया दे अंदर डुब गए, जिन्हां ने आवाज नहीं सुनी वह खत्म हो गए। ना इन्हे मां दी सुनी, ना इन्हे पिता दी सुनी, ते ना इन्हे गुरु दी आवाज सुनी। आखिर बेड़ी तो बगैर दरिया दे अंदर इन्हें पैर पाया, बेड़ी तो बगैर उतरना शुरू कर दिता। बेड़ी तो बगैर दरिया दे अंदर उतरिया है, ते उतरदिया सार ही समझ आ गई कि जो मां ने कहा सी वह सच है, जो पिता ने कहा सी ठीक है, जो गुरु ने गल सुनाई सी वह बिल्कुल नरोल हकीकत है। ये गल पल्ले पै गई, ये गल समझ विच आ गई कि जो पातशाह ने कहा सी ना वह ठीक है। ते फिर अखीरले वकत पछताउंदा है, आवाज देंदा है, मां हुण मैनू बचा। ते मां ने कहा बेटा भुखी प्यासी रह के मैं अपने जिस्म दा जूस दुध रूप विच तेरे मुंह विच पा सकदी सां, उह पौंदी रही, जिथे डुब रहे इथो बचाउणा मेरे वस विच नहीं है। पिता नूं आवाज दित्ती, पिता जी तुसी बचाओ। ते पिता ने भी कहा बेटा जदों मैं तेनूं कहिंदा सां तूं सुणदा नहीं सै, अज तू डुब रहा है पर इथे आण के मैं तेरा मददगार बना ए गल मेरे बस विच भी नहीं। इने वास्ता पाया तरला लिया पाशा तुसी दयालु हो कृपालु हो मेनू बचाओ। ते सतगुरु ने कहा सजना निरंकार दा बनिया होया अटल असूल मैं भी तोड़ना नहीं चाहुंदा। मैं 100 साल तेनू बचाउन वास्ते आवाजा देंदा रहा कि बच डुब जाएगा बच डुब जाएगा। तू मेरी एक बार नहीं सुनी अज तू अपने कर्मा दे इवज डुबेगा। अज तेनू बचाउना नहीं क्योंकि तेरे कर्म तेनू डोब रहे ने तेरा भार तेनू डोब रहा है। तो जिंदगी दे अंदर जेड़ा वेला खट्टी खट्टन दा है उस वेले बेहोशी दे अंदर रह के ओ जीवन नू बर्बाद ना करो गुजारो ना। फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी सियो उदों ते तेरा मन रत्या रहा रंगिया रहा दुनियादारी दे नाल। कहन लगे मर्ग सवाई नहीं सहजे सहजे मौत दी नींह भरदी गई मौत नेड़े नेड़े आउंदी गई। ते जिस दिन मौत नेड़े आ गई जां भरिया तां लद्दिया नी भरी गई तेनू लदना पिया मतलब जाना पिया। मौत दा पल आया तेनू पश्चाताप करदे होए नू इथों रुखसत होना पिया। भगत फरीद साहब जी दे सलोक नू आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन कर रहा सां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन जिन्ने श्रोते माई भाई आप गुरु दरबार दी रौनक वधा रहे हो सबना दे मना दे अंदर सतगुरु जी गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन अज्ञानता दा हनेरा दूर करन। तमाम
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो देख फरीदा जोथिया

0: ने दूसरे सतगुरु गुरु अंगद देव साहब ते गुरु अमरदास साहब जी का सिर नीवा हुंदा जा रहा है, पैरों पैर नीवा हुंदा जा रहा है। कोल खड़े ने बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा जी ने प्रश्न कर दिता, कह लगे सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी, जद आप इथे आउंदे से लोग तुहानू दुर्बोल बोलदे सन, तुसी निर्माणता दे अंदर रह के गरीबी नू अपना के सिर नीवा करके चलदे रहे, लोकां दीआं गल्लां ना सुनियां। चलो गल समझ विच आउंदी है कि रब की कृपा मिलदी इस तरह, पर अज ते सतगुरु तुहाडे ते बड़ी वड्डी मेहरबानी कर रहे ने, तुहाडे उत्ते त्रुट पै, तुहानू अपने वर्गा बनाया, गुरु नानक दी गद्दी दा तीसरा मालक बनाया, अज भी सिर नीवा है। अज ते फकर दे नाल सिर उच्चा होना चाहिए, एक मान दे नाल सिर उच्चा होना चाहिए कि मेरी मेहनत नू रंग लगा, मेरी सेवा मेरी कालना नू फल मिल गया। अज ते सिर उच्चा करो। सत्कार योग गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कहन लगे, बाबा बुढ़ा साहब जी, तुसी जानदे हो कि रुख दी जेड़ी टहनी नू जिन्ना ज्यादा फल लगदा है वो उन्ना ही ज्यादा चुक के जमीन वल नू आ जांदी है, ते जेड़ी रुख दी टहनी नू फल लगे ना वो सीधी खड़ी रहिंदी है। इन्ना फल लगा है, इन्ना गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी मेरे ते त्रुठे ने, ते मेरा सिर झुकेगा ही ना, क्योंकि फल बहुता लग गया, बड़ी कृपा मेरे ते हुई, तां करके मेरा सिर नीवा है। दूसरे पासे सानू थोड़ा जिहा फल लगदा है ते साडा सिर उठना शुरू हो जांदा है। धन नहीं सी सिर नीवा नजर आउंदा है, धन कोल आ गया है सिर खड़ा नजर आउंदा है, उच्चा हो जांदा है, गुरु दे सामने भी चुकन तो गुरेज करदा है। चोली खाली सी ते सिर नीवा दिसदा है, चोली भर गई है ते सिर खड़ा कर लैंदा है, मेरे वर्गा दुनिया दे विच कौन है, कोई गुण कोई कला कोई तालीम जद नहीं ते सिर नीवा करदा है, जद सब कुछ आ जांदा है ते फिर सिर उच्चा करके चल रहे, मेरे बराबर दा दुनिया विच है कौन, मेरे वर्गा दूसरा है कौन। तो भगत फरीद साहब जी दे ए श्लोक, इस तो अगला श्लोक जो भगत फरीद साहब जी दी बख्शिश, कहन लगा फरीदा खाक ना निंदी है, पैरां दे थल्ले जो खाक है भगत जी कहिंदे ने उन्नू ना निंदा, खाकू जेड़ ना कोई, उस खाक वर्गा मिट्टी वर्गा कोई भी नहीं है, जीवन दे पैरां तले मोया उपर होए, जिउंदिया तेरे हेठ रहिंदी है, मरण तो बाद वो तेरे उत्ते आ जांदी है। जो मनुख निर्माणता विच चलदा है वो बेशक लोकां दे पैरां दी खाक बन के चलदा है, गरीब बन के चलदा है, पर जद उहनूं फल मिलदा है ते वो सारिआं तों उत्ता उच्चा चला जांदा है, उच्चा उठ जांदा है सारिआं तों उच्चा। इस तरह ही भगतां दे जीवन विच होया है, इस तरह ही गुरु साहिबानां दे जीवन विच होया है, जो नीवे बन के चले ने वो उच्चे हो गए, ते जे वो उच्चे बन के चलण दा यतन करदे रहे वो नीवे दे नीवे ही रहे। आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा। धन गुरु अर्जन देव साहब जी इस तरह भी सुखमनी साहब की बाणी विच हुक्म फरमा रहे ने, आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये, ओनू एवें समझ लो सब ते ऊंचा, ते जिहड़ा अपने आप नू उच्चा समझदा है वो उच्चा भी नहीं हुंदा, वो बल्कि नीवा ही रह जांदा है और सदा वास्ते है। भगत फरीद साहब जी दे इन्हां सलोकां नू आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करन दा निमाणा यतन कीता गया।
1: वाहिगुरु साहिब जीओ, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, त्रिग तिना दा जीविया जिन्ना विदानी आस।

जानई सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए। गैला रूह ना जानई सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़

मिठियां रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बाहरों मेरे सिर दे उत्ते बजी हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उन्ना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्ते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओ वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्हां ने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओह इह है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे ब्री पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है, ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओह मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते, उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोता पानी दे नाल तोलो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए, मैल अंदर चली जाए ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना वह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है पावे दोवें गुना दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आन के जेड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उदा नाम अपराध है। अपराध नू डर हुंदा है हाथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नू ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ, मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा ही चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी का मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैर यह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समां मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवें आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवें आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवें आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कह रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओ मैल जाणी है उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नामे कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुनदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करै दिनस अर रात। इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे वी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने वी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, वी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो एदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाई। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाई है। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रिहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अज्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे ना ही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना, लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे। कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना? कहन लगे ना ही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया मिलता है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अज थां थां दे उत्ते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संघ एक ही शरीर का चाहिए, बहुतिया शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां। तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल। मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनूं कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनूं आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनूं आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हां। उस तों पहला नहीं, जे तन मैला है ते असीं अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे। एलानिया कह देना चाहना, जे मन मैला है ते श्री गुरु

रब ना पूजन तुद फरीद रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख।

पत्नी है, छे बच्चे ने, माया धारी ने, बार दे त्यागी नहीं है, ते गुरबाणी बार दे त्यागी बनाउंदी भी नहीं है। गुरबाणी नूं कोई इतराज नहीं कि तुसी सीस महिला विच क्यों रहिंदे हो, गुरबाणी नूं कोई इतराज नहीं कि तुसी पुत्र पत्नी तियां दे अंदर क्यों रहिंदे हो। अंदरों त्यागी बनना है, गुरबाणी अंदरों कुछ छडाउणा चाहुंदी है, ते अंदर गुण वसाउणा चाहुंदी है, बार दे त्यागी गुरबाणी बनाउंदी भी नहीं है। बारों घर बार नूं छड्ड देना ते घर दी जगह दे उत्ते जाके आश्रम बनाउणे शुरू करदे ने, बारों तियां पुत्रां नूं छड्डना ते तियां पुत्रां दी जगह दे उत्ते जाके चेले चपटे पालने शुरू करदे ने, गुरबाणी ये फैसला सुनाउंदी नहीं है। तो फरीद साहब कह रहे ने लावण मेरी भुख, हुण अगां कह रहे ने जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख, जिन्ना ने लोकां नूं लुट लुट के पराया हक मार मार के चोपड़ी खादी, चंगा चोखा खादा है। भगत जी कहन लगे चार दिन उन्होंने जिंदगी दे पराया हक मार के चंगा हंडाया, चंगा पाया, चंगा खादा, पर कहणगे ओही दुख दा बायस बन गया, कारण भी दुख दा ओही बने। पराया हक खाना कहन लगे दुख दा कारण बन गया, घने सहणगे दुख। और पहले सलोक नूं अगले सलोक दे अंदर भगत फरीद साहब फेर खोल रहे ने, अगर गुरबाणी नूं ध्यान दे के सुनो पढ़ो ना ते गुरबाणी अपने अर्थ आपे ही कर देंदी है। अगले सलोक विच भगत फरीद साहब अपने अंदर दे हाव भाव नूं खुल्लिया बोलां विच पेश करदे ने, कहिंदे ने रुखी सुखी खाए के, हुण लगणगे ना तुहानूं दोवें सलोक विरोधी। पहले विच कह रहे ने रोटी मेरी काटकी, ते जे काटकी है आप काटकी खांदे ने ते सानूं रुखी सुखी खाण वास्ते उपदेश क्यों कर रहे, सानू भी काट दी खान वास्ते उपदेश करन। गुरु साहिबाना ने जो आप कीता है वो करन लई उपदेश देंदे ने, जो आप नहीं कीता वो करन लई उपदेश देंदे भी नहीं है। अगर फरीद साहब लकड़ दी रोटी खा के गुजारा करदे रहे ते सानू रुखे सुखी खान लई क्यों कह रहे ने, क्यों प्रेरणा दे रहे, सानू भी कह देंदे तुसी भी काट दी खाओ, भरोसा रखो, विश्वास रखो, रबी गुण गाओ ते तुहाडा भी मोर्चा फतेह हो जाएगा। नहीं, अगले सलोक विच गल खोल रहे ने रुखी सुखी खाए कह ठंडा पानी पियो, कहन लगे पानी पी छड्या कर, रुखी सुखी मेहनत दी सुची किरत दी हक हकूक दी जो तेनू मिल जाए ओ खा, चोपड़ी मिल जाए तां इतराज नहीं, रुखी मिल जाए तां इतराज नहीं। रुखी सुखी खाए कह ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई परायां दी चोपड़ी वेख के, चंगी वेख के, चंगा कारोबार वेख के, चंगा भोजन कपड़ा वेख के ना तरसाए जीओ, कहन लगे अपने आप नूं तरसा ना। फिर बेनती करां गुरबाणी दे अखरी अर्थ उपरों उपरों लो ते मन विच बड़ी वार दुबदा बन जाएगी, थोड़ा जिहा गहराई विच जाके गुरबाणी दे रतन लभण दा यतन करो। मैं इंग्लैंड सी, मेरे उत्ते दो चंगे वैल एजुकेटिड मनुखा ने प्रश्न किया, पढ़े लिखे सजना ने प्रश्न किया, ज्ञानी जी तुसी बाहां खड़िया कर करके स्टेज दे उत्ते बहुत वार कहिंदे हो गुरबाणी झूठी नहीं, गुरबाणी सच्ची है, गुरबाणी दा अखर अखर सच है, पर अज दे विज्ञान ने बाणी नूं झूठी साबित कर दिता। मैं क्या भी केड़ा बचन गुरबाणी दा तुहानूं इस तरह लगा है कि जो साइंटिफिक ढंग दे नाल सही ना होवे, वैज्ञानिक ढंग दे नाल उह खरा ना होवे ते तुहानूं उहदे विच झूठ दिसदा होवे, किहड़ा बोल इस तरह दा। उन्होंने दो पंक्तियां बोलियां, कहिण लगे गुरबाणी कहिंदी नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काल सवारे, भी पशु मरदा है ते बड़े कमां नूं सवारदा है, ते नरू मरदा है मनुख मरदा है ते किसे काम नहीं आउंदा। कहिण लगे गल गुरबाणी विच आउंदी है ना, मैं कहा जी जरूर आउंदी है। कहन लगे फिर अज अगर मरण तो पहला मनुख लिखती रूप विच गल कह जावे कि मेरिया अखा कढ़ के दान कीतियां जान ते अखा कम आ जांदियां ने, चार घंटे दे अंदर अंदर अखा कढ़ लिया जान ते ओ वरतों विच आ जांदियां ने, फिर गुरबाणी झूठी हो गई ना। जद बंदे दे अंग कढ़ के वरतों विच आ सकदे ने, किडनी वरतों विच, अख वरतों विच, ते गुरबाणी कहिंदी नरू मरे नर काम ना आवे, हुण उपरों उपरों वखरी अर्थ लोगे ते ही बनणगे, पर भुलेखा खा जाओगे, पर जद जाओगे गहराई विच ते गुरबाणी दी सूझ पैगी गुरबाणी कहिंदी की है। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा, नरू मरे बंदे दे अंदरों जद बंदा

अग्नि जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, चल रही लड़ी वार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी दी मुबारक बाणी विचो अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ। दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सहुरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सहुरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सहुरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर वह आत्मा जाएगी किथे? इह शरीर आत्मा नूं छड्डना पैंदा है। असीं तीन चीजां दा सुमेल चल रहे हां। साडे पास तन है, साडे पास मन है, ते तीसरी साडे पास आत्मा है। तिन्हां चीजां दा सुमेल ही असीं चल रहे हां। चलो मैं आरंभ दे अंदर एक होर बेनती करदा चला। तन दा अपना फल, मन दा अपना फल, ते आत्मा दा अपना फल वखो वखरे तिन्हां दे फल ने, और वखरियां वखरियां ही तिन्हां चीजां दीआं गुलामियां ने, वखरे वखरे बंधन ने। तन दे बंधन वखरे ने, मन दे बंधन वखरे ने, आत्मा दे बंधन वखरे ने, तिन्हां दे रोग वखो वखरे ने। खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, साडा तन तन नूं फल लगदा है औलाद पैदा करनी। तन कोलों तन ही पैदा हुंदा है, होर कुछ भी नहीं। धीआं दा जन्म हुंदा है, पुत्रां दा जन्म हुंदा है तन करके। मन नूं फल मिलदा है ज्ञान दा, और जद मन नूं ज्ञान दा फल मिल जांदा है, फिर इस तों अगे चल के आत्मा नूं फल लगदा है रब्बी रस दा, परमात्मा दे रस दा। जिस मनुख दे मन नूं ज्ञान दा फल नहीं मिलिया, उहदी आत्मा नूं रब्बी रस दा फल भी नहीं लगेगा। शरीर दे संबंध विच कोई प्रूफ पेश करना, कोई सबूत पेश करना कि शरीर हुंदा है, शरीर इस तरह दा हुंदा है, कोई लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर अपना भी वेख रहे हैं, ते शरीर प्रकृति दे अंदर दूसरियां दा भी वेख रहे हैं। मन दे संबंध विच भी सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मन दे संबंध विच असीं रोज रोज गल करदे नजर आ रहे हैं। अज मेरा मन मनदा सी मैं कुछ खा लवां, मैं बना के खा लिया। मेरा मन करदा सी गुरुद्वारे चला जावां, ते मैं आ गया। मन करदा सी अज गुरुद्वारे नहीं जाना, ते मैं नहीं आया। मन करदा सी अमृत वेले उठा, मैं उठ पिया। मन करदा सी सुता रवां, ना उठा, मैं नहीं उठिया। मन दी गल तुसीं वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विषय है, ते तन

नहीं ले पाएगी, जरूरी नहीं है। तो खैर जोबन जाते रहा है, जा किधर रहा है, हनेरे दे अंदर जा रहा है, पटकदा होया जोबन नजर आ रहा है। जोबन कोई सफला हुंदा नजर नहीं आ रहा, खिमा चाहवांगा बोल कुछ कौड़े ने और मन नू चोट ना करन। भगत जी कहन लगे जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, मेरा जोबन चला जाए मैनू डर नहीं है, झिझक नहीं है, मैं जोबन नू छड्डन लई तैयार हां, कुर्बान करन लई तैयार हां। पर पुछया भगत जी जोबन दे इवज चाहिदा की है, जोबन दे बदले चाहिदा की है। आखिया शह दी प्रीत, परमात्मा दी प्रीत चाहिदी है, रब दा प्रेम चाहिदा है। अगर जोबन दे के खुदाई प्रेम मिल गया है तो समझ लो सौदा बड़ा सस्ता मिल गया, बड़ा सस्ता मिल गया। पता नहीं किन्नी बारे जोबन मिलिया है ते किन्नी बारे सुक गया है, बुराइयां दे अंदर कुमला गया है, बुराइयां दे अंदर ते जेड़ा बूटा सुक जांदा है कुमला जांदा है उन्हों ना पत्ते ही लगदे ने, ना फुल ही लगदे ने ते ना फल ही लगदे ने। अगर तुहाडे जोबन नू सत संतोख दा फल नहीं लगा, भाव भावनी दे फुल नहीं लगे, श्रद्धा प्यार दीआं टहिणियां शाखावां ने इस जोबन दे उत्ते जन्म नहीं लिया तो फिर जोबन सुक्का समझो, जोबन नू हरिया मत समझो। जोबन दे अंदर की है, निरा सुक्का निरा कमलाउना, पर इह सुक्का कमलाउना नजर कित्थों आ रहा है, क्योंकि जेड़ियां टहिणियां सुक जांदियां ने मुरझा जांदियां ने उन्हां दा रूप रंग चला जांदा है, उन्हां दी बहार चली जांदी है, सुंदरता चली जांदी है। मनुखी मन दी सुंदरता अलोप है, कुमलाया मुरझाया होकिया झोरिया दे अंदर नजर पै रहा है, कोई फुल नहीं, कोई फल नहीं, कोई भावना नहीं ते कोई शांति सुकून जोबन दे अंदर नहीं, निरा अग्ञान निरिया टकरा। जोबन दे अंदर जोश बड़ा है पर जोबन दे अंदर होश दी अख तो बगैर चल रहे हैं, ते जे जोबन होश दी अख तो बगैर चले ते जोबन हर दे पानी तरह हुंदा है, ते रोड़ के लै जांदा है, नुकसान बड़ा करदा है। जोबन दे अंदर जोश होना जरूरी है पर नाल होश दी अख मिलना होर जरूरी है, बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर होश तो बगैर जोबन नू खुला छड्या जाए ते ए जोबन नुकसान बड़ा करदा है। अगर इस जोबन नू होश दे किनारे मिल जन, होश इनू एक सीमा दे अंदर बन के चलाए ते फिर एक दरिया दे पानी नदी दे पानी नू किनारिया दे विचकार विचकार रोकदे रोकदे भावें सैकड़े मील दूर लै जाओ पानी नू, वो पानी नुकसानदायक नहीं है जो चल रहा है, पर दो किनारिया दे विचकार चल रहा है, वो पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नू तोड़ के चल रहा है, फसलां नू तबाह करेगा, पिंडां आबादियां शहरां नू तबाह करेगा और मनुख नू तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जोबन हड़ दा रूप बन जांदी है जद इनू किनारे ना मिलन, इनू सीमा ना मिले, इनू होश दे नेत्र ना मिलन। अगर यह होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले तो इस जोबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे जोबन जांदे ना डरा, जोबन चला जाए मैनू कोई डर नहीं है, पर इसदे इवज मिलना की चाहिदा है, परमात्मा दा प्रेम मिलना चाहिदा है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नू असी प्रेम जान लिया है हकीकत दे अंदर वो प्रेम नहीं है, यह प्रेम ते पशुआं कोल भी हुंदा है, शरीर शरीर दी कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर दी पकड़ विच रहिंदा है, बड़ा नीमी पत्तर दा प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी दा प्रेम है, शरीर नू शरीर दे नाल प्रेम है, और एक शरीर दूसरे शरीर कोलों रज जांदा है, शरीर कोलों भर जांदा है ते ओ शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीरां नू बदलना शरीर दे नाल प्यार करना यह पशु दे तुल प्रेम है, यह प्यार ते पशु कोल भी है। तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहिदा सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उत्ते, मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है, इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने, मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जाती है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां

जिन श्रिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

तेरा तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश करया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारया, गुर डिठा ता मन साधारया, सो कहो तल गुर सेवी है, ऐनिस सहज सो पाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ

नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही